0: तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है,
1: तेरी प्यारी मेरी राहत की,
0: तेरे इश्क में बहकर ये दिलबर है, तेरे इश्क में चलकर